ज़र पे दिल पे यूं ही लगाए जा, खोले वो या न खोले दर उस पे हो क्यों तेरी नजर, तू तो बस अपना काम कर यानी सदा लगाए जा। यू डू योर वर्क, कीप ऑन टैपिंग एट द डोर एंड द डोर विल ओपन। It's not like our telecom that your call will be answered and sometimes never answered. Lots of calls, they tell you, hold on, your call will be answered, and you keep on holding and it's not answered. This door will open.

याद अपनी रचा दे ऐ मेरे अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह, जाम मोहब्बत अपना पिला दे। गिव मी द कप ऑफ योर मोहब्बत फ्रॉम योर ओशन ऑफ मोहब्बत एंड मारिफत, गिव मी द ड्रिंक। दैट इज वन थिंग दैट विल मेक द पर्सन देन मूव। मोहब्बत मेक्स अ पर्सन मूव्स माउंटेन्स, ही डजंट सी व्हाट इज इन हिज पाथ आफ्टर दैट। Even if he has to go and rest forever on Mount Everest, but he will climb it. The muhabbat of that. The person has to jog hundreds of kilometers, he will do it. Marathon he will run. Winter, summer, it's not rain, hail, anything. It's passion. Once the person gets a passion for something. So this muhabbat is a thing like that. So we ask Allah Ta'ala, Jaame muhabbat apna pila de. دل میں میرے یاد اپنی رچا دے.

या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे, जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे। या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे, जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे।

तेरे दर पर तेरा बंदा व उम्मीद करम आया। गरचे पुर खता है पर कहां जाए तेरा बंदा। Although I am full of sins, weakness, shortcomings, but where do we, your slaves, go, my Allah? Tere dar par tera banda va ummeed-e karam aaya. Your slave has come to your door. We are tapping at your door, my Allah. This very moment you are watching us. How generous you are, how forgiving you are, how kind you are, how loving you are. Garche pur khata hai par kaha jaye tera banda. तेरे दर पर तेरा बंदा ब उम्मीद करम आया। तेरे दर पर तेरा बंदा ब उम्मीद करम आया।

जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी।